0: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: अच्छा अच्छा बोलो बोलो प्यार है मऊ चांदी आला करिश्मा कपूर अच्छा ओ गंदा आला शाहरुख खान अच्छा अच्छा
0: और हिंदी कविता
2: डंगर है
3: सोना
4: सोना
3: सोना
2: मंडल।